0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं।
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

झुट लाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: शब में कोई पाप मांगता है दुआ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: This is FM 101.
5: Farzande Payambar ka Madine se safar hai. Sadat ki basti ke ujadne ki khabar hai. Darpesh hai wo gham کہ جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک گرے باں ہے، صبا خاک بسر ہے، گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، ہر قلب حزین ہے تو ہر ایک چشم ہے پرنم، ایسا نہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم، قل ہے کہ چلا دلبر مخدوم آئے عالم، خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روزے پہ اداسی ہے رسول عربی کے، تدبیر سفر میں ہیں ادھر سبت پیمبر، گھر میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں باہر، اسباب نکلواتے ہیں عباس سے دلاور، تقسیم سواری کے تردد میں ہیں اکبر، شہ کو جنہیں لے جانا ہے وہ پاتے ہیں گھوڑے، خالی ہوا استبل چلے آتے ہیں گھوڑے، عورات محلہ چلی آتی ہیں بسد غم، کہتی ہیں یہ دن رحلت زہرا سے نہیں کم، پرسے کی طرح رونے کا غل ہوتا ہے ہر دم، فرش اٹھتا ہے کیا بچھتی ہے گویا صفے ماتم، گل ہوتا ہے ہر سمت جدا ہوتی ہے زینب، ہر ایک کے گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب، لے لے کے بلائیں یہی سب کرتی ہیں تقریر، اس گرمی کے موسم میں کہاں جاتے ہیں شبیر، سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی ہمشیر، مسلم کا خطائے تو کریں کوچ کی تدبیر، للہ ابھی قبر پیمبر کو نہ چھوڑیں، گھر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر کو نہ چھوڑیں، ان بیبیوں سے کہتی تھیں یہ شاہ کی ہمشیر، بہنوں ہمیں یثرب سے لیے جاتی ہے تقدیر، اس شہر میں رہنا نہیں ملتا کسی تدبیر، یہ خط پہ خط آئے ہیں کہ مجبور ہیں شبیر، مجھ کو بھی ہے رنج ایسا کہ کچھ کہہ نہیں سکتی، بھائی سے جدا ہو کے مگر رہ نہیں سکتی، یہ کہتی تھی زینب کہ پکارے شہ عادل، تیار ہیں دروازے پہ سب حوض جو محمل، طے شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو کہ اب رونے سے حاصل، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سحر ہے، بچے کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، بیت الشرف خاص سے نکلے شہ ابرار، روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے اطرتِ اطہار، فراشوں کو عباس پکارے یہ بتکرار، پردے کی قناتوں سے خبردار خبردار، باہر حرم آتے ہیں رسول دوسرا کے، शुका कोई झुक जाए ना झोंके से हवा के। अब्बास से अली से अली अकबर ने कहा तब, हैं काफलाए सालारे हरम हजरत जैनब, पहले हूं वो असवार तो महमिल में चढ़े सब। हजरत ने कहा हाँ यही मेरा भी है मतलब, घर में मेरे जहरा की जगह बिनते अली है, मैं जानता हूं माँ मेरे हमराह चली है। जैनब दहे महमिल जो हुई दुख्तरे जहरा, नाकों पे चढ़े सब हरमे सैयदे वाला, आने लगे रहवार खुला गर्द का पर्दा, अब्बास से बोले ये शहे यसरबो बतहा, सदमा है बिछड़ने का मेरे रूहे नबी पर, रुखसत को चलो कब्रे रसूले अरबी पर, पैदल शहेदी रोजाए अहमद पे सिधारे, तुरबत से सदा आई के आ आ मेरे प्यारे, तावीज से शब्बीर लिपट कर ये पुकारे, मिलता नहीं आराम नवासे को तुम्हारे, खत क्या है अजल का ये पयाम आया है नाना, आज आखरी रुखसत को गुलाम आया है नाना। ये कह के मला कब्र से शहने जो रुखे पाक, हिलने लगा सदमे से मजारे शहे लौलाक, जुम्बिश जो हुई कब्र को थर्रा गए अफलाक, कांपी जो जमीन सहने मुकद्दस में उड़ी खाक, इस शोर में आई ये सदा रोजाए जद से, तुम आगे चलो हम भी निकलते हैं लहद से। इस जिक्र पे रोया किए शह सर को झुकाए, वहां से जो उठे फातिमा की कब्र पे आए, पाई ने लहद गिर के बहुत अश्क बहाए, आवाज ये आई कि मैं सदके मेरे जाए, है शोर तेरे कूच का जिस दिन से वतन में, प्यारे मैं उसी दिन से तड़पती हूं कफन में। पहलू में जो थी फातिमा के तुर्बते शब्बर, उस कब्र से लिपटे बमोहब्बत शहे सफदर, चिल्लाए के शब्बीर की रुखसत है बरादर, हजरत को तो पहलू हुआ अम्मा का मयसर, कब्रें भी जुदा हैं तहे अफलाक हमारी, देखें हमें ले जाए कहां खाक हमारी। रोशन हुई काबे की जमीन नूर खुदा से, मक्के ने शरफ और भी पाया शुरफा से, झुक झुक के मिले सिप्ते पयंबर गुरबा से, आबाद हुआ शहर नमाजों की सदा से, खुश हो के हवा खा ये कहते थे अली के, सब बाप की खूबू है नवासे में नबी के, काबे में भी एक दिन न मिला शाह को आराम, कूफे से चले आते थे नामे सहरो शाम, आदा ने गुजरने न दिए हज के भी अय्याम, खोला पिसरे फातिमा ने बांध के अहराम, आजिम तरफे राह इलाही हुए हजरत, थी हश्तमे जुलहज के राही हुए हजरत, मिलता था कोई मर्द मुसाफिर जो सरे राह, यूं पूछते थे उससे बहसरत शहे जी जा, ऐसा कोई सहरा भी है ऐ बंदा ए अल्लाह, एक नहर सिवा जिसमें हो चश्मा न कोई चाह, क्या मिलता है इस दश्त में और क्या नहीं मिलता, हम ढूंढते फिरते हैं वो सहरा नहीं मिलता। वो अर्ज ये करता था कि सिप्ते शहे लौलाक, है सख्त पुरंदोह वो सहरा तहे अफलाक, हंसता हुआ वहां जाए तो हो जाता है गमनाक, सुनता हूं वहां दिन को उड़ाता है कोई खाक, वहां रात को आती है सदा सीना जनी की, दरवेश की मुमकिन है सुकूनत न गनी की, चिल्लाती है औरत कोई है मेरे फरजंद, इस दश्त में हो जाएगा तू खाक का पैवंद, तलवारों से टुकड़े यही होंगे तेरे दिल बंद, पानी यही हो जाएगा बच्चों पे तेरे बंद, प्यारे तू इसी खाक पे घोड़े से गिरेगा, है यही खंजर तेरी गर्दन पे फिरेगा। एक शेर तराई में ये चिल्लाता है दिन रात, कट जाएंगे या हाथ मेरे लाल के है हाथ, क्या हाल कहूं नहर का ऐशा है खुश औकात, पानी तो नहीं शोर पे मशहूर है ये बात, तायर भी दमे तश्ना दहानी नहीं पीते, वैशी कभी वान के पानी नहीं पीते। उस जाना उतरता है ना दम लेता है राहगीर, है शोर के इस आब में है आग की तासीर, प्यासों के लिए उसकी हर एक मौज है शमशीर, इस तरह हवा चलती है जिस तरह चलें तीर, बुझती नहीं वहां प्यास किसी तश्ना गुलू की, बू आती है उस नहर के पानी में लहू की। उस शख्स से ये कह के चले क़िबलाए आलम, अल्लाह ने चाहा तो बसाएंगे उसे हम, आशिक पे बला बादे बला आती है हर दम, गम और बढ़ा वसल का अरसा जो रहा कम। आफत ये नई फौज शहनशाह में आई, मुस्लिम की शहादत की खबर राह में आई, वारिस के लिए जौजाए मुस्लिम का था ये हाल, महमिल से गिरी पड़ती थी बिखराए हुए बाल, रोते थे बहन के लिए अब्बास से खुश इकबाल, वो कहती थी साथ आए थे छोटे मेरे दो लाल, पूछो तो किधर वो मेरे प्यारे गए दोनों, फरमाते थे शब्बीर के मारे गए दोनों। मैदान शहादत में जो वारिद हुए सरवर, वहां घाट पे उतरा हुआ था शाम का लश्कर, बरपा हुए रेती पे कयाम शहे सफदर, पानी न कई दिन हुआ प्यासों को मयसर, अब्बास को पानी के न मिलने का अलम था, भाई की भी थी फिक्र सकीना का भी गम था, वो बाग तो सब तीन पहर में हुआ पामाल, अब सर्वे गुलिस्तान मोहम्मद का सुनो हाल, दुश्मन तो है 9 लाख और एक फातमा का लाल, सर तेगों से जख्मी है बदन तीरों से गरबाल, पहुंचा नहीं 2 रोज से पानी जो दहा में, हैं प्यास से कांटे गुले जहरा की जबा में, इमामा ए महबूब खुदा खून में तर है, मखदूमा ए आलम की रिदा खून में तर है, बहता है लहू सर से गला खून में तर है, सारे तने अतहर की कबा खून में तर है, गर्मी की भड़क थी के फुके जाते थे शब्बीर, रहवार की गर्दन पे झुके जाते थे शब्बीर, आती थी सदा हजरते जहरा की ये उस आन, सदके तेरे ऐ कौम दगा पेश के मेहमान, लू चलती है और धूप की शिद्दत है मेरी जान, कुछ रोक लो साए के लिए सर पे मैं कुर्बान, ये धूप का सदमा ना सहा जाएगा वारी, 2 रोज के प्यासे हो गश आ जाएगा वारी, कब्जे में है मौला के यदुल्लाह की शमशीर, पर सब्र के जौहर उन्हें दिखलाते हैं शब्बीर, हर जख्म पे है शुक्र हर एक तीर पे तकबीर, फरमाते हैं राजी हूं मैं ऐ मालिके तकदीर, खाने की न पानी की न राहत की तलब है, या रब मुझे उम्मत की शफाअत की तलब है। ये कहते थे हजरत के बड़े बर्चियों वाले, और आए पसे पुष्ट सवारों के रसाले, दाहने को प्यादे गए तलवारें निकाले, जहरा के जिगर बंद पे चलने लगे भाले, उल था के करो टुकड़े मोहम्मद के जिगर को, घोड़े पे संभलने न दो जहरा के पिसर को, नागाह गिरे गर्म जमी पे शहे अबरार, आसार कयामत के हुए रन में नमूदार, और हाय पे कत्ल बढ़ा शिमरे सितमगार, गर्दन पे नमाजी के फिरा खंजरे खूंखार, फरजंद जबरदस्त यदुल्लाह को मारा, शब्बीर को क्या अहमद जीजा को मारा।
6: आवाज दे रहा है ये मैदान ए करबला, آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

बहन गरीब है भैया, कफन भी ला ना सकी। बहन गरीब है भैया, कफन भी ला ना सकी।

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
2: 101 FM.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: This is FM 101.

तक आबाद रहेगा। बर्बाद था यजीद, वो बर्बाद रहेगा। हुसैन तेरे खून की हर एक कतरे से गुलशन मेरे ईमान का आबाद रहेगा। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: Now it's the time for news. The biggest FM radio network of Pak. दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। ईरान के सदर पाकिस्तान के एक रोजा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई। अक्वामे मुतहेदा में पाकिस्तान ने शाम में सूरत हाल की मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग के मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला भारत से लंदन में होगा।
1: द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: 101 FM.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: This is FM 101.
6: Karbala kehti hai Islam ka mayar hoon main. Meri khaak pe tapka hai Abbas ka lahu. Pehle jungle thi, magar aaj se gulzar hoon main. इसीलिए सारी जमीनों की अलमदार हूं मैं। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। ईरान के सदर पाकिस्तान के एक रोजा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। नायब वजीर आजम ने कहा है कि अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त मुस्तकबिल के मुजाकरात के लिए एक काबिल एतमाद लाए अमल है। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग के मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला भारत से लंदन में होगा।
1: बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: 101 FM.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: This is FM 101.
6: वो जिसने अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सुपुर्दे खुदा कर दिया, नोश कर लिया जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: Now it's the time for news. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one about.
1: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। ईरान के सदर पाकिस्तान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त को मुस्तकबिल के मुज़ाकरात के लिए सोच समझ कर तैयार की गई दस्तावेज करार दिया है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि हुकूमत अवाम को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए IPPs के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगी। और अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए फौरी जंग बंदी और मुज़ाकराती अमल की बहाली का मुतालबा किया है। और अब खबरें तफसील के साथ।
0: नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, ट्यून इनटू द वन अबव, FM 101.
2: 101 FM.

सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मुझे, गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे।

वहां दिन को उड़ाता है कोई खाक, वहां रात को आती है सदा सीना जनी की, दरवेश की मुमकिन है सुकूनत न गनी की, चिल्लाती है औरत कोई है मेरे फर्जंद, इस दश्त में हो जाएगा तू खाक का पैवंद, तलवारों से टुकड़े यहीं होंगे तेरे दिल बंद, पानी यहीं हो जाएगा बच्चों पे तेरे बंद, प्यारे तू इसी खाक पे घोड़े से गिरेगा, है यही खंजर तेरी गर्दन पे फिरेगा। एक शेर तराई में ये चिल्लाता है दिन रात, कट जाएंगे या हाथ मेरे लाल के है हाथ, क्या हाल कहूं नहर का ऐसा है खुश औकात, पानी तो नहीं शोर पे मशहूर है ये बात, टायर भी दमे तशना दहानी नहीं पीते, वैशी कभी वान के पानी नहीं पीते, उस जाना उतरता है ना दम लेता है राहगीर, है शोर के इस आब में है आग की तासीर, प्यासों के लिए उसकी हर एक मौज है शमशीर, इस तरह हवा चलती है जिस तरह चलें तीर, बुझती नहीं वहां प्यास किसी तशना गुलू की, बू आती है उस नहर के पानी में लहू की। उस शख्स से ये कह के चले क़िबलाए आलम, अल्लाह ने चाहा तो बसाएंगे उसे हम, आशिक पे बला बादे बला आती है हर दम, गम और बढ़ा वसल का अरसा जो रहा कम, आफत ये नई फौज शहनशाह में आई, मुस्लिम की शहादत की खबर राह में आई, वारिस के लिए जौजाए मुस्लिम का था ये हाल, महमिल से गिरी पड़ती थी बिखराए हुए बाल, रोते थे बहन के लिए अब्बास से खुश इकबाल, वो कहती थी साथ आए थे छोटे मेरे दो लाल, पूछो तो किधर वो मेरे प्यारे गए दोनों, फरमाते थे शब्बीर के मारे गए दोनों, मैदान शहादत में जो वारिद हुए सरवर, वहां घाट पे उतरा हुआ था शाम का लश्कर, बरपा हुए रेती पे खयाम शहे सफदर, पानी न कई दिन हुआ प्यासों को मयसर, अब्बास को पानी के न मिलने का अलम था, भाई की भी थी फिक्र सकीना का भी गम था, वो बाग तो सब तीन पहर में हुआ पामाल, अब सर्वे गुलिस्तान मोहम्मद का सुनो हाल, दुश्मन तो है 9 लाख और एक फातमा का लाल, सर तेगों से जख्मी है बदन तीरों से गरबाल, पहुंचा नहीं 2 रोज से पानी जो दहा में, हैं प्यास से कांटे गुले जहरा की जबा में, इमामा महबूब खुदा खून में तर है, मखदूमाए आलम की रिदा खून में तर है, बहता है लहू सर से गला खून में तर है, सारे तने अतहर की कबा खून में तर है, गर्मी की भड़क थी के फुके जाते थे शब्बीर, रहवार की गर्दन पे झुके जाते थे शब्बीर, आती थी सदा हजरत जहरा की ये उस आन, सदके तेरे ऐ कौम दगा पेश के मेहमान, लू चलती है और धूप की शिद्दत है मेरी जान, कुछ रोक लो साए के लिए सर पे मैं कुर्बान, ये धूप का सदमा ना सहा जाएगा वारी, 2 रोज के प्यासे हो गश आ जाएगा वारी, कब्जे में है मौला के यदुल्लाह की शमशीर, पर सब्र के जौहर उन्हें दिखलाते हैं शब्बीर, हर जख्म पे है शुक्र हर एक तीर पे तकबीर, फरमाते हैं राजी हूं मैं ऐ मालिके तकदीर, खाने की न पानी की न राहत की तलब है, या रब मुझे उम्मत की शफाअत की तलब है, ये कहते थे हजरत के बड़े बरछियों वाले, और आए पसे पुष्ट सवारों के रसाले, दाहने को प्यादे गए तलवारें निकाले,
सहरा के जिगर बंद पे चलने लगे भाले। उल्था के करो टुकड़े मोहम्मद के जिगर को, घोड़े पे संभलने ना दो जहरा के पिसर को। नागाह गिरे गर्म जमी पे शहे अबरार, आसार कयामत के हुए रन में नमूदार। और हाय पे कत्ल बढ़ा शिमरे सितमगार, गर्दन पे नमाजी के फिरा खंजरे खूंखार। फरजंद जबरदस्त यदुल्लाह को मारा, शब्बीर को क्या अहमद जीजा को मारा।

अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के फरोग में अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के सदर ने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने, कशीदगी में कमी और इलाका इस्तेहकाम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें हटाने के बाद अहम शाहराएं और सड़कें खोल दी गई हैं। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के फरोग में अपना किरदार अदा करते रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़िश्कियान के साथ वफूद की सतह पर बातचीत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान भाई भाई हैं।
1: 101 FM
2: This is FM 101.
3: आवाज दे रहा है ये मैदान करबला। आवाज दे रहा है ये मैदान करबला। कुछ रोज रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बाद अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नए दौर का आगाज होगा। ईरान के सदर ने इलाका इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और मुदब्बिराना किरदार की तारीफ की है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल आज़म का इरादा किया है। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अक्वामे मुत्तहिदा के अमन फौजियों के खिलाफ जुराइम के एहतसाब के लिए पाकिस्तान और डेनमार्क की जानिब से पेश की गई करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली है। खबरें तफसील के साथ।
1: रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101
2: एफएम। आवाज दे रहा है ये मैदान करबला, आवाज दे रहा है ये मैदान करबला। कुछ रोज रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। आप सुन रहे हैं एफएम 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: 101 टाइम चेक, इट्स 12 मिडनाइट।
1: आवाज दे रहा है ये मैदान ए करबला, आवाज दे रहा है ये मैदान ए करबला। कुछ रोज रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: शब्बीर करबला की हुकूमत का ताजदार, इंसान का नाज दोष नबूवत का शाह सवार है, जिसकी ठोकरों में खुदाई का इक्तदार, जिसके गदागरों से हिरासा है रूजगार, जिसने जमीन को अर्श मुकद्दर बना दिया, जर्रों को आफताब का महफर बना दिया, वो जिसकी बंदगी में सिमटती है दावरी, खोले दिलों पे जिसने रुमूजे दिलावरी, लुटकर भी की है जिसने शरीयत की यावरी, जिसने समंदरों को सिखाई शनावरी, वो जिसका गम है अब्र की सूरत तना हुआ, सहरा है रश के मौजाए कौसर बना हुआ, जिसके गुलाम अब भी सुलेमा से कम नहीं, जिसका मजार खुल्द के ईवा से कम नहीं, जिसका मिजाज वादाए यजदा से कम नहीं, जिसकी जबीं लताफते कुरान से कम नहीं, वो जिसकी प्यास चश्माए आबे हयात है, वो जिसका नाम आज भी वजहे निजात है, वो कहकशां जबीं वो जबी है फलक मकाम, जिसने किया जमीर अना में सदा कयाम, जिसने जबीन अर्श पे लिखा बशर का नाम, जिसकी सखावतों को सखावत करे सलाम, नोके सिना को रुतबाए मेराज बख्श दे, जो दश्त को फलक का हसीन ताज बख्श दे, कंकर को दुर बनाए कहां कोई जौहरी, इजाद की हुसैन ने ये कीमिया गरी, बख्शी है यूं बशर को मलाइक पे बर्तरी, बच्चों को एक पल में बनाता गया जरी, वो जिसने शक को हक का करीना सिखा दिया, जिसने बशर को मर के भी जीना सिखा दिया, जो मीरे कारवान मुअद्दत है वो हुसैन, जो मरकजे निगाह मशीयत है वो हुसैन, जो राजदार किंजे हकीकत है वो हुसैन, जो ताजदार मल्क शरीयत है वो हुसैन, वो जिसका अज़्म आप ही अपनी मिसाल है, जिसकी नहीं को हाँ में बदलना मुहाल है, मौला तू जी रहा है अजब एहतमाम से, समझे हैं हम खुदा को भी तेरे कलाम से, किरने वो फूटती हैं सदा तेरे नाम से, करते हैं तेरा जिक्र सभी एहतराम से, पाया है वो मकाम अबद तेरे नाम ने, आया न फिर यजीद कोई तेरे सामने।
1: करबला कहती है इस्लाम का मयार हूं मैं, मेरी खाक पे टपका है अब्बास का लहू, पहले जंगल थी मगर आज से गुलजार हूं मैं, इसीलिए सारी जमीनों की अलमदार हूं मैं।
2: आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

चली, झोंकों से जिसके उड़ते हैं सर वो हवा चली। आवाज अलामा की सिपहरे बरी पथी, बढ़कर जो यू फिरे सफे अव्वल जमी पथी। पहुंचे जो मिसल शेर झपट कर इधर उधर, सर गिर पड़े तराई में कटकर इधर उधर। आया गया फरस जो सिमट कर इधर उधर, ढालों का अब्र रह गया फटकर इधर उधर। जा रोक थी कि सैफ मियां ने मसाफ थी, दरिया की राह हमले अव्वल में साफ थी। जब सन से फौज शाम पे वो शोला रू चली, बस सर के बल सकर में सिपाहे अदू चली। ठहरी बड़ी चमकती हुई चार सू चली, आई किसाब ताप से क्या सुर्ख रू चली। तेजी यू ही जबान सुखनवर को चाहिए, पास आबरू का साहिब जौहर को चाहिए। गुल था कि वो चमकती हुई आई ये गिरी, बरछी सी उड़ गई वो सना ये गिरा गिरी। तरकश कटा कमाने की आनी से जे गिरी, सर उड़ गया वो खोद उड़ा ये गिरा गिरी। आती है लश्करों पे तबाही इसी तरह, गिरती है बरके कहरे इलाही इसी तरह। जुल्मत से नूर, नूर से जुल्मत जुदा हुई, वहदत से एक जर्ब में कसरत जुदा हुई। दीने मुबी से कुफर की बिदत जुदा हुई, ईमा के रास्ते से जलालत जुदा हुई। इस दबदबे से जेर किया रूमो शाम को, हुक्म जिहाद फिर न हुआ नौ इमाम को। अल्लाह हरे तला तुम्हें अफवाह जरूसिया, टकराते थे पर मिलती न थी भागने की राह। गुल था पनाह दे हमें ए आसमा पनाह, उम्मत रसूल पाक की होती है अब तबाह। बख्शो खता ये काम है मौला सवाब का, सदका मोहम्मद अरबी की जनाब का। उस शोर में सुना जो रसूल खुदा का नाम, पढ़कर दुरूद आपने बस रोक ली हुसाम। फरमाया खैर लेगा खुदा तुमसे इंतकाम, आजिर नहीं ये बेकसो मजलूम तश्ना काम। क्या चीज सर है बात पे हम लोग मरते हैं, देखो इस इख्तियार पे यूं सब्र करते हैं। भागो ना लो नियाम में रखता हूं मैं हुसाम, मुश्ताके कुर्बे हक है ये मजलूम तश्ना काम। दुनिया से अब गरज है न कुछ जिंदगी से काम, हाजिर है सर फकीर का क्या कूच क्या मुकाम। बैठे नहीं जमी पे खजाने को गाड़ के, मात आई उठ खड़े हुए दामन को झाड़। जिस रोज था ये हश्र ये मातम ये शोर शर, आ पहुंचा एक मुसाफिर गुर्बत जदा उधर। निकला था घर से शौके नजफ में वो खुश सियर, छोड़े हुए वतन उसे गुजरा था साल भर। बेखानमा को इश्क खुदा के वली का था, मुश्ताक वो जियारत कब्र अली का था। रुख जर्द पांव सूझे हुए जिस्म पर गुबार, ईमान और एतकाद कवि पर बदन नजार। ताअत गुजार नेक अकीदत वफा शियार, ने राहिला नजाद न हमदम न गम गुसार। ये आरजू के गौहरे बहरे शरफ मिले, छानू जहां की खाक पर दुर्रे नजफ मिले। सर को कदम किए वो सईदो खुजस्त पै, दो दिन की राह करता था एक एक दिन में तय। प्यारी न थी जो कते मसाफत से कोई शय, आसान थी उसको दूरी शामो इराक रह। उन जंगलों में बादिया पैमा था दीन का, गज बन गया था राह खुदा की जमीन का। करता था हर कदम पर दुआ वो बाश को आ, पहुंचा दे मुझको मंजिल मकसद पे या इला। समझाते थे उसे जो मुसाफिर में आने रहा,
ایک دن مقام